इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: बड़ा हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM.
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्प

लाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harsh Deepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

Assalamualaikum वादाब and a warm welcome to all of you. दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM उन लोग हाजिर है और जेसुस लेकर शो व्हाट्सअप.

दोस्तों, रेडियो चनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन। डू फॉलो शेयर सब्सक्राइब रेडियो चनार ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें। सर्च करें रेडियो चनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन और याद रखिए कि आपका प्यार बनाता है रेडियो चनार को सही मेरे यार। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर। ऐप स्टोर से डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन टू www.radiochennai.com। जॉक्स के साथ शो वॉट्सअप से रिएक्ट धड़काते रहो।

0: Ninja Zeus. Going now.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
2: This frequency aur dil ki dhadkan radio channel 90.4 FM. Mustard show, what's up show my brother aaj ka weather.
1: Radio Chennai.
2: Weather update. Jee, aaj ke weather mein kya hai khas? Har ek ehsaas aapke paas, kyunki har dil ki dhadkan radio channel. Aap hi dhadkate hain mere yaar.
1: Radio Chennai. Weather update.
2: आइए आपको बताते हैं आज का वेदर क्या क्या था। कल के मुकाबले 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस।
1: Radio Chennai.
2: Weather update. There are chances कि कुछ इलाकों में गरज बरस की संभावना है एंड बारिशें भी बरस सकती है। दोपहर होते होते सूरज बादल सूरज को घेरने की कोशिश करेंगे। यू इंडेक्स 4 पर अभी के लिए। ह्यूमिडिटी 75%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:45 पर, आज का सनसेट होगा 7:30 पर। फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल जॉक्सिस के साथ मेरे यार सिरे हट दर

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM.
1: What's NASA? NASA is the one in Punjabi.

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक जो होता है वायरल। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं एक स्कैमर की जिसने चीट करा एक डिवोटी को और चीटिंग से परे होने से पहले ही, लोकेशन से फरार होने से पहले ही पुलिस ने उसे दर्द दबोचा। यहाँ ये किस्सा है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल का, जहाँ पर एक खातून एक औरत दर्शन के लिए आई थी और वहाँ पर उसे एक बंदा मिला जिसने कहा कि मैं वीआईपी दर्शन कराऊंगा, मतलब जो भी क्राउड है उससे हटकर आपको स्पेशल जगह से ले जाकर स्पेशल दर्शन कराए जाएंगे जस्ट बिकॉज वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो भीड़ को अवॉइड किया जाएगा। अब उस बंदे ने 4,000 रुपये ऐंठे थे और जैसे ही पुलिस के मौजूद इंस्पेक्टर शिखाऊ शिवाकंत मिश्रा को पता चली तो पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकंत ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए स्कैमर को उतरी धर दबोचा, दबोचकर उससे पैसे तो हासिल किए और साथ ही साथ ये भी बताया कि भैया इंडियन पुलिस 24 घंटे चौकन्नी रहती है। अब इंसिडेंट वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ गया। हम सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप रेडियो चुनार 90.4 एफएम पर, मैं हूं जॉक ज़ियस। जी हां, रेडियो चुनार पर एड फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: असली तो है ना,
1: कितनी सुंदर।
2: सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे।
3: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: समझ गया भाव, पैसे देके आता हूँ।

0: bunch of dudes.
1: Going out.
2: Radio Shalom 90.4 FM Hartal ke Dharkan Show WhatsApp Show mein Shri Amarnath Yatra 2026 updates. जी हाँ, 467,986 संपूर्ण कर चुके हैं अपनी यात्रा और 964 पिलग्रिम्स जो है आज बालतल बेस कैंप से निकल चुके हैं अपनी यात्रा के सफर पर. आपको बताते चले, आज हॉट एंड ह्यूमिड रहने वाला है अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वालों का लिए वेदर अपडेट. और वही अगर हम मैक्सिमम की बात करें 33 और मिनिमम रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस. साथ ही पहाड़ी एरिया है, हाई आल्टीट्यूड और बीच बीच में बारिश रहने का जो चांस है दैट्स 20%.

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।
5: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कवर टॉप द डे।
6: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
5: आज का कोट कहता है मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। चौकसी उसके साथ मजदार शो सबसे धड़काते रहो।

0: bunch of Zeus.
1: कौन आया?
2: Zeus.
3: हाँ जी बुजुर्गो, नया नहीं और सया नहीं और जेसुरा नानो पहचानी और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो, वो सब मैं हूँ आपका साथी जैक्सियस। अब हम जुड़े हुए हैं इस सफर में जिसका नाम है व्हाट्सएप। जी हाँ, मजेदार शो व्हाट्सएप तभी बनता है जब आप लोगों का साथ मिलता है। तो अपना साथ अपनी बात हमसे करें मुलाकात 8899904904। बड़ा हाथ कॉल कर सकते हैं आप व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मेरे यार रेडियो चनार सही बनाता है जैसे आपका प्यार। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्हें क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब टाइमलाइन वाला क्रेडिट नहीं, अखबार वाला क्रेडिट नहीं, क्रेडिट में बोल रहा हूँ जिंदगी का, डेली लाइफ में जब वो काम करते हैं, किसी को बचाते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी की मुसीबत में आड़े आते हैं, अपनी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन हीरोज की जिन्हें कहा जाता है एवरीडे हीरोज। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां जो रोज बनती है, जैसे कि मैंने अभी वायरल ऑन व्हाट्सएप पर कहा, एक पुलिस वाला जो कि कहीं से आ गया और लड़की को बचा लिया क्योंकि उसे स्कैमर जो है ठग रहा था, उसके पैसे हट रहा था। एंड दैट्स व्हाट हीरोज डू। अब सुपरमैन की तरह सारे शाल लपेट कर उड़ने लगे तो भैया एयर ट्रैफिक जो है गड़बड़ा जाएगा। अब सुपर हीरोज क्या करते हैं, एवरीडे हीरोज क्या करते हैं, लोगों के काम आते

0: हैं, अपनी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आप भी आज सोशल मीडिया पर कितने किस्से देखते होंगे जहां पर फलानी ने फलानी को बचाया, ये मदद कर दी, वो मदद कर दी। उन्हीं किस्सों को, उन्हीं कहानियों को पहुंचाएं आप तक। तो मेहरबान कदरदान, खाइए मोहब्बत का पान, क्योंकि जाना किधर है, आपका हीरो इधर है। रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर व्हाट्सअप शो का टॉपिक एवरीडे हीरोज, और अगर आपकी भी किसी ने मदद की है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। आज उन हीरोज को क्रेडिट दीजिए जो आपकी जिंदगी में आपके काम आए हैं। बताइए हमें, अपनी बात पहुंचाइए हम तक, और हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चुनार की आवाज।
1: देखा है तुझको जब
0: और नौ नौ नौ सिफर चोर नौ सिफर चोर नंबर और दिल की धड़कन रेडियो चुनार से रिहट मेरी जान धड़का दे रहा।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: bunch of Zeus. Kom aja.
1: Zeus.
2: Regional ki hardest frequency var. Jee haan, everyday superheroes aaj ka topic. Arif hamare saath jude hain, likhte hain Arif Jumana aur Noor hai unke saath. And he's like, we are traveling right now. Aur aaj hum supermarket ja rahe hain. Aur aapka jo topic hai, everyday superheroes. To bhaiya, har wo shakhs superhero hai jo apne bachon ki dekhrekh karta hai. Matlab har ek बच्चे का बाप उसके लिए सुपर हीरो होता है. नो वंडर फॉर दैट. और जैसा कि कहा जाता है कि माँ के बिना ममता अधूरी है, और अगर बाप ना हो तो एक खिलौने के लिए भी बच्चा तरस जाता है. गॉड ब्लेस यू आरिफ एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट शॉपिंग डे अहेड. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू रेडियो चैनल 90.4 FM.

0: Everyday superheroes, आज का टॉपिक एंड when we talk about superheroes, it's all gimmick जो हमें दिखाया जाता है कि भैया उड़ने वाले आंखों से लेजर, हाथों से खंजर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अगर हम देखें तो जो characteristics है they are no special in anything. जो सुपर पावर्स या सुपर हीरोज होते हैं they can be teachers, they can be neighbors, they can be parents, they can be anybody. Anybody who's there to help you around is a superhero.
1: Yes.
0: एक moral courage की जरूरत होती है और इस चीज की समझ कि सही क्या है और गलत क्या है.
1: Yes.
0: अब कुछ लोग कैमरा के आगे सुपर हीरो बनते हैं, लोगों के आगे सुपर हीरो बनते हैं और किसी की मदद करते ही उसका शोशा उसकी मसूरी बना देते हैं. लेकिन पते की बात यह है कि सुपर हीरो तब भी आपको बनना चाहिए जब कोई देख नहीं रहा हो. یتس کشرس پچھ ون کہ اگر اکیت کرو بیس اتس گھت فرق اینڈ اٹ از لائف سیلف لیس ایکشن. کوئی بھی کہیں پہ آپدا میں ہو, کرائسس ہو یا کوئی اسٹرگل کر رہا ہو, کسی کو پروٹیکٹ کرنا, ایوری تھنگ وچ یو میکس یو فیل لائک کوئی ولنریبل ہے کسی چیز کو لے کر اس کی مدد کرنا از ناٹ لیس دین اے سپر ہیرو. Radio Show 90.4 FM, आज का टॉपिक Everyday Superheroes, Hardest Frequency पर जॉक्स के साथ सीधे तड़काते रहो. शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-0494 है नंबर. मेरी जान, स्टे कनेक्टेड टू हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, क्योंकि रेडियो चैनल सही है मेरे यार.

0: Jesus.
1: कौन आया?
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप, मैं हूं आपका साथी जैक्सियस एवरीडे सुपर हीरोज। आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम एवरीडे सुपर हीरोज की बात करें या ओवरऑल हीरोज की बात करें, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। जैसा कि मैंने कहा, उड़ना, केप्स पहनना या सुपर चार्ज कार्स में ट्रैवल करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट नीड हाई फाई स्टेटस एंड दैट गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर टू बी अ सुपर हीरो। जस्ट करेज एंड लाइक हेल्पिंग पीपल कैन मेक यू आउट ऑफ द बॉक्स। हमारे देश में कितने सारे सुपर हीरोज हैं, चाहे वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर हो, चाहे वो आर्मी ड्रेस में हो, एवरी वन ऑफ देम इज अ सुपर हीरो। एंड फॉर अ मैटर, अगर आप देख रहे हैं कहीं पर पुलिस या प्रशासन को मदद की जरूरत है, तो आप आगे आकर एक सुपर हीरो या एक हीरो का फर्ज अंजाम दे सकते हैं। कितने सारे तबके हैं जो हीरोज की तरह इस देश में ट्राइंग टू कीप एवरीवन सिक्योर, चाहे वो फायर फाइटर्स हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो। जब लोग खतरे से भागते हैं, पुलिस आर्मी वो खतरे की तरफ जाकर उससे लड़ती है जस्ट टू कीप देयर पीपल सेफ। और वैसा ही कुछ है वॉलंटियर्स, केयर गिवर्स, एल्डरली, हु एवरीवन हु इज देयर टू हेल्प, from elderly to young ones, everyone there who is providing a helping hand is a superhero. हर जगह आपको किस्से कहानियां मिल ही जाएंगी, ऐसे लोग जो लोगों को बॉडीगार्ड करते हैं,
3: आप रहें या ना रहें।
2: रेडियो 90.4 एफएम पर अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज़।
3: रॉयल्टी को भी नहीं छोड़ते।
2: जी हाँ, टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज, जहाँ पर बॉलीवुड से अपडेट्स और साथ ही टेक वर्ल्ड से न्यूज पहुंचाई जाएगी आप तक। जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मैं हूँ जॉक्स, धड़काते रहो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना

0: सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Special Zeus.
1: Kon aaya?
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Hot frequency, hot dil ki dhadkan radio channel 90.4 FM segment Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: दोस्तों रेडियो चैनल बॉलीवुड न्यूज़, आइए बात करते हैं प्रदीप रावत की। 74 साल के प्रदीप रावत कैंसर से जूझ रहे थे और 74 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बात की पुष्टि उनके मैनेजर ने की है कि वो इस बीमारी से, इस तकलीफ से जूझ रहे थे तकरीबन 4 साल से और फाइनली अपनी आखिरी सांस कल 4 अगस्त को उन्होंने ली। रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं।

पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: News.
1: कौन आया?
2: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
3: दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 FM शो वॉसम में बॉलीवुड न्यूज़।
2: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
3: कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा के बीच में छिड़ चुकी है कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुई और ले रही है बदला रुख। एक दूसरे पर इल्जाम, एक दूसरे पर कटाक्ष और साथ ही साथ आड़े टेढ़े नामों से

एक दूसरे को पकारना, फैंस आर सेइंग भैया बस करो बहुत हो गया। हर फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, हम आ चुके हैं टेक टॉक्स की और जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।
0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: Kommer der, ja.
1: Hottest frequency her dil ke dhadkan radio channel 90.4 FM WhatsApp show mein segment Tech Talks. Tech Talks mein aaiye aapko batate hain ki fresh Pixel 11 series ji haan jiski leaks logon tak pahunch gayi hai bataya ja raha hai thinner camera bar aur 30 hours tak battery backup. Agar aisa hua to battery ke deewane log shayad iPhone से ज्यादा परफेक्ट पिक्सल 11 को समझने लगे। वीडियो चैनल 90.4 एफएम एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर टुडे। मैं जा रहा हूँ आ रही आरजे दीवा लेकर शो चिनार बीट्स एंड दैट्स वेरीफाइड। Until we meet again, keep your head high, walk tall and always remember that I love you all. कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा Zeus the Bad Boy of Radio के नाम से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो चैनल सुनते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मसलामा।

Beats with Harshadeva only on Radio Channel 90.4 FM.

देखिए, मैं कोई अनजानी नहीं हूँ, शहर भी अपना है और लोग भी अपने हैं, क्योंकि ये मेरी पूरी वाइबो ट्राइब है। 91.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीस का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब बीस और बीस।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar, beats up, enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa dei sari information aap tak pahunchti hai. So well, I too super duper excited for what? Excited mein aida, main koi bhi package nahi book kara hua, kyunki mujhe pata hai ki main kahan jaungi, yahi aungi aapse dei sari baatein karne. सो मैं आ गई हूँ आपसे बात करने, तो ये है कि मैं अकेले नहीं, मेरी पूरी वाइब ट्राइब है. अब मैं ये दावे से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ. तभी तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे और भी बातें करती जाऊँ और ये सफ़र यूँ ही चलता रहे. फिलहाल सफ़र तो चल पड़ा है, गाड़ी चल पड़ी है, सवारी बन जाइए. और वो कहते हैं ना कि सवारी बनकर आपने बस इन्जॉय करना है सफ़र में, और ज़रूर आपके ओपिनियंस थॉट्स इनका बराबर ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम पहुँचाते हैं आपकी आवाज़ वहाँ वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. अब जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ से आवाज़ वापस भी आ सकती है कि 8999 0494 पर कॉल, टेक्स, व्हाट्सएप करके हालात, जज्बात, ख्याल समझे जाएंगे. मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही रख ली है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा ही मिलेगा और बैक टू बैक सॉन्ग्स.

जरूर होंगे। तो ये बंदी गलत नहीं हूँ, गलत बात ही नहीं है, माहौल बदल चुका है। बैक टू बैक सॉन्ग्स है ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल के धड़कन।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये सारी बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे पे आपको बता दें अपडेट ये है कि सस्पेंड है वेहिकुलर मूवमेंट बोथ साइड से, यानी कि हम ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, बिकॉज अभी काम चल रहा है शूटिंग स्टोन्स की वजह से, मड स्लाइड्स की वजह से अभी रास्ता बंद पड़ा है। सो मेंटेनेंस चल रही है और कब ये ट्रैफिक फिर से खोल दिया जाएगा, दोनों साइड से रिस्टोर होगा और आप आ सकते जा सकते हो, ग्रीन सिग्नल्स देने पर ही आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है और जब भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपने पता होना चाहिए कि आज नेशनल हाईवे पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं हो रही है, रोड डैमेज हो चुका है और काम चल रहा है। सो अपना प्लान अकॉर्डिंगली ही बनाएं और उसके अलावा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना हर एक रोड पे नेसेसरी है, ये हमारा फ़र्ज है। इसके लिए हमें ये नहीं है कोई कि भैया जी क्यों बोल रहे हैं, क्यों कैसे बोल रहे हैं। देखिए ये हमारा फ़र्ज है और उसके बावजूद भी ये आप लोगों का फ़र्ज है कि अपना ख्याल खुद रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपनी जान किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि जब आप हैं तभी हर खुशी मैसर हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बातें हो रही है, आप भी बताइए कि क्या बातें चल रही है, क्या है जिया में वो बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहता है, तो जल्दी से बताइए। शो का हिस्सा बन जाइए 8999 0494 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Unstoppable with RJ Deeba.
1: जी हाँ, अनस्टॉपेबल शो चुनाव बीट्स का एक छोटा सा सेगमेंट जहाँ पे एक डोज डेली डोज है रोज, और इस डेली डोज का मतलब ही है डोज, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमने रोकनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जिन पे हमें थोड़ा गौर फरमाना चाहिए, कुछ चीज़ें हिमन पटेस थोड़ा सा छिपे वहाँ सोचन। वैसे ऐसा हुआ है कभी घर में कि जब हम कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट दैट सेम पर्सन की जिन्हें पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, जो हर चीज़ पे रिएक्ट करते थे, लेकिन हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर पे घर पे भी सब कहते हैं कि से क्या घूमत आज, क्या इसने करा आज, कहते रिएक्शन, मन यानी कि हमें एक टाइम पे हम नम हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं देते। बट ट्रस्ट मी, लेटर ऑन वी रियलाइज कि हम में तो पेशेंस बढ़ चुके हैं, और ट्रस्ट मी वो पेशेंस हमें लाइफ में बहुत ही आगे लेकर जाता है। एंड मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ पे रिएक्शन देते हैं या फिर जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो लोगों को हमारी वो वीकनेस पता चल जाती है कि सहल पाउन इमसे जल्दी गसा यह अच्छे फर्ज पड़गा सामित। सो वो जो वर्ड है ना, फरस पड़गा सुनवर्थित, एंड इट्स ऑलवेज लाइक कि हम फिर कॉशियस हो जाते हैं कि भाई अभी हमें कुछ करेंगे और हम जल्दी चढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक पेशेंस जब डेवलप होता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द लोग हमें कभी कभार इस्तेमाल भी करते हैं हमारे इमोशंस के लिए, हमारी वीकनेस के लिए। दैट्स नॉट आवर वीकनेस, दैट्स आवर इमोशन, कि हम बहुत रियल होते हैं उन इंसानों के साथ। बट वही है कि कभी कभार हमें अपने उस रियलिटी को, या फिर हम कह सकते हैं दैट्स आवर प्राइवेट थिंग, वो हमारी एक स्ट्रेंथ बनकर हमारे लिए काम करता है, वो हमें छुपाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस सिचुएशन दुन गासने की ट्राइश कर उनके अपने आप पे कंट्रोल आना है, ट्राइश कर उनके अगर कोई ये भी बोले कि आप नम हो, आपको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो फ़र्क क्या इस पे एस ये पता इसकी आठ पद किन क्या छुपा जा कि अगर इस जात रिएक्ट करो तुम चीज़ माँ गसन यम सद इस जात कमज़ोर गसो। تہ کیا چھو باسان تھی ورنو اس پنی رائے کرو شیئر 8899090004 نمبر ٹیکسٹ واٹس ایپ کرو کال کرو سوچنا اور بیٹس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अपने कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं ना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कश्मीर, जन्नत है, जन्नत बेनज़ीर है, कश्मीर की खूबसूरती का भी अलग है, कश्मीर का बाजवान अलग है, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी अलग है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट इतना ही, इट्स बहुत कुछ। इट्स वो फ्रेज़ है कश्मीरी में कि घर बंद है ये घर साथा बर नेर है नज़ा। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट बिकॉज एज अ कश्मीरी वी लव कश्मीर, वी लव आर होम। इट्स दैट कि हमें ऐसा लगता है कि कश्मीर में हम

कर हम पूरे हो जाते हैं, और ये हमारा घर है, हमारी ज़िंदगी है। तो हम कितना अपने कश्मीर के बारे में जानते हैं। देखिए, आउटसाइड कश्मीर पीपल आर सो मच एक्साइटेड अबाउट कि व्हाट इज़ कश्मीर, बट एज अ कश्मीरी हाउ मच वी नो कश्मीर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड हम मिलके आज बात करने जा रहे हैं कि हम आपसी में हमें क्या पता है अपने कश्मीर के बारे में। इट्स नॉट ओनली डल लेक, इट्स नॉट ओनली शिकारा, इट्स नॉट ओनली वाजवान, इट्स मच मोर। सो वो मच मोर है क्या, हम कश्मीरियों का वो मच मोर है क्या, एक्चुअली व्हाट इज दैट, उस चीज़ के बारे में बात करें। और मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें कि आप अपने कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने कश्मीर से, मुझे बताएं। शो कैसा बन जाए, शो चुनार बीट्स रेडियो चुनार 91.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: चुनार बीट्स विद हर्ष दीपा, ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। 90.4 FM।

0: Beats on repeat.
1: Beats on repeat. Jo Chunar beats up. Enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Day sari baatein ho rahi hain. We are talking about our Kashmir. Panni Kashmir hins par. Mujhe zaz gat karan ki ghar vand hai ghar sa sabar nair hai nizam. Par ye bhi hai ki hum ghar se kehte hai ki Kashmir hamara khoobsurat hai. Har Kashmiri khoobsurat hai. Aur bahut sare jawab mere liye yahan par aaye hai ki Kashmir ki mehman nawazi sirf mehman nawazi nahi hoti. Kyunki usually jab koi mehman bahar se aate to wo hum कहते कि मेहमान है, बट हम कहते हैं कि वो हमारे घर का फर्द है, कि वो हमारे साथ हमारी तरह ही रह सकता है, खा सकता है. हम उसे मेहमान की नज़र से देखते ही नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मेहमान नवाजी, इट्स अबाउट कि हम उन्हें घर का एक खास हिस्सा बना लेते हैं. अब देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है ना कि हम मेहमान को मेहमान नहीं, हम उन्हें अपना घर का एक शुनाक बर्ज चेस्तम्स बनावान गैरुक. और मुझे लगता है कि कश्मीर का हर ज़र्रा, हर एक चीज़, हर एक इंसान काफ़ी खूबसूरत है. जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, यानी कश्मीर से बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं. कुछ चीज़ें अच्छी हमें देखने को मिलती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है. देखिए जब हम एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, पाँच साल, दस साल जब हम घर की ओर रुख करते हैं, जब हम कश्मीर की ओर जाते हैं, वो फीलिंग एक डिफरेंट फीलिंग होती है. ये भी किसी लिसनर ने भेजा है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, बट दे आर सेइंग कि जब कश्मीर की ओर चले, यानी वो खुशबू ही आ जाती हवाओं में, वो फिजाओं में, हमें समझ आता है कि हम कश्मीर

पहुंच चुके हैं और कश्मीर के एक जर्रे से, हर एक तरफ से हमें यही आवाज आती कि तो छुवत मिल घर, आप घर आइए, आप फाइनली घर आ चुके हैं। हमें अगर कोई कश्मीरी मिले तो हमें बस वो फीलिंग आती है कि बस दीदार हो गया भैया। अब ये है ही, ये रिश्ता काफ़ी मजबूत भी है, खूबसूरत भी है। बेशक कश्मीर काफ़ी वो अलग निकलते हैं ना, जब भी कहीं पे जाते हैं तो उनके उनका आप बिल्कुल वो कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा। यू आर लाइक नहीं भाई ये कश्मीरी है, ये दूर से कश्मीरी लगता है, क्योंकि वो फीलिंग ही आ जाती है, अपने जज्बात मिल जाते हैं। सो कश्मीर इतना खूबसूरत है कि आपसी में भी हमें इतना प्यार है एक दूसरे से, पर पता नहीं क्यों कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के कारण वो भूल जाते कि हम कश्मीरी हैं, या फिर हम किन चीज़ों से हमें माना जाता है, किन चीज़ों से हमें जाना जाता है। देखिए वो नहीं भूलना है, कश्मीर का जो वो मज़ा है, कश्मीर की जो वो बात है वो अधूरी नहीं, वो पूरी होनी चाहिए। और कश्मीर हमेशा हमें अपना कश्मीर ही लगना चाहिए, क्योंकि वो खूबसूरती, वो प्यार सिर्फ हमें वैसे ही मिल जाता है। अब कोई ऐसी चीज़ आपको क्या लगता है कश्मीर की खूबसूरत है, सो हाउ मच डू यू नो अबाउट या कश्मीर, 88 999 0494 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो कैसे बन जाए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जरिया नहीं जांदिया फ्रेंड मैं तो तेरिया लैम्बोर्गिनी तक थे लौंदा फिर गेड़िया जरिया नहीं जांदिया फ्रेंड मैं तो तेरिया
1: जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी हूँ और उसमें कोई शक ही

जी हाँ, 91.4 रेडियो चुनाव प्रयागराज। तो 12 बजे हो चुका है पर बात अभी जारी है और आगाज होने जा रहा है जो म्यूजिक ऑन डिमांड का। आए हाँ, ये खुशी और ये खुशी बढ़ रही है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने जा रहे हैं, यानी कि आपके जो भी रिक्वेस्ट है वो पूरी होगी बस कुछ ही टाइम के बाद। 1:30 से लेकर बराबर 2 बजे तक आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, 8899904904 पर आपने कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं। एंड उसके अलावा कोई मैसेज अपने लाउड वन के लिए जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बताइए, मैं पहुँचाऊँगी आपकी वो मैसेज वहाँ वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, चुनार बीट्स को टाटा बाय बाय कर लिया है फिलहाल के लिए। शो कैसा बन जाए, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM, शो म्यूज़िक ऑन डिमांड। सर से अपनी रिक्वेस्ट दर गए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आरिफ की रिक्वेस्ट आई है स्ट्राइक के लिए, तुम बिन आप ही एंजॉय कीजिए। ऑनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM शो म्यूजिक ऑन डिमांड का पहला रिक्वेस्ट है ये, तो आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8899-04904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड, आप एंजॉय कर रहे हो ओनली रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। और आपको बता दें कि आज की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899049 04X, व्हाट्सएप की जो शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

ये मन तो लग चुका है, बट मन ये भी कह रहा है कि आज रेडियो गर्ल्स है, तो रेडियो गर्ल्स में हम बात ही करते हैं ना, यानी कि मिलके करते हैं मैं और अश्रा बात रेडियो गर्ल्स में। और क्या है आज का टॉपिक बताएंगे, अभी कुछ ही देर में हम जुड़ने वाले हैं आपसे, बातें करने वाले, बस थोड़ा सा इंतज़ार, हम यू वापस आएंगे।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल स्टार हो चुका है बिड़ू और मैं अकेली नहीं है, मेरे साथ अज़रा हम हैं मिल के आपके साथ। हम हमेशा कहते हैं साथ साथ और आप भी कुछ बोलिए दीजिए साथ।
1: हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ कब से कि हम शुरू करेंगे शो रेडियो गर्ल्स, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। जो भी इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशंस हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दीबा जहाँ एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत होती है,
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मज़ा आता है रेडियो गर्ल्स में जब हम मिल के आपसे बात करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ऐसी बात हम कर रहे हैं जिसकी सख्त ज़रूरत है कि अभी के टाइम में अगर कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम आपसे बात पहुंचाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि आपकी राय भी हम ले और पहुंचाए हर जगह जहाँ पर रेडियो चुनार की आवाज़ पहुँचती है। सो आज शो चुनार बीट्स तो ख़त्म हो चुका है, म्यूज़िक ऑन डिमांड ख़त्म हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है रेडियो गर्ल्स और अभी शुरुआत है रेडियो गर्ल्स और हंगामा इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। बट हमने सोचा कि हम पहले ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। टॉपिक एक मुझे लगता है कि ऐसा लड़कियों के साथ मोस्टली होता है,
1: मिसबिहेव होता है और मुझे
0: बहुत ज़्यादा
1: और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, बात होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी आता है सामने कि ऐसा बोला जाता है लड़कियों, क्योंकि आपको बर्दाश्त करना चाहिए और इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इग्नोर कर दो। बट अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं?
0: बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट इवटेजिंग। देखिए ऐसा है कि ये लगता है कि छोटा सा टॉपिक है, नहीं छोटा नहीं है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें पब्लिक हरासमेंट होता है, इसमें हमारा मेंटल हरासमेंट भी हो जाता है, हमारे दिमाग और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों ही खराब हो जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: इट्स नॉट दैट वी छोटा सा लव्स है और छोटी सी चीज है, ठीक है भाई हो गया, नहीं, इससे हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, इससे हमारा पूरा लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर ये चीज हो रही है और हम इस पे बात नहीं कर रहे और खुद ही अगर हम एक्शन ना ले, ट्रस्ट मी, हम इतना ज्यादा बुरा फंसते हैं, इतना ज्यादा लाइफ में ये समझ नहीं पाते कि अगर कुछ चीजों को हम चुप्पी बरतते हैं कि नहीं ठीक है जी जाने दो,
1: कोई बात नहीं,
0: पर आगे जाकर वही चीज़ हमारे लिए वापस आती है, क्योंकि हम हर चीज़ में फिर चुप करने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हाँ ठीक है सह लेते से, और सहने में हमें फिर आदत हो जाती है, और सहना बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ों पे आवाज़ उठाना बहुत ही ज़्यादा
1: ज़रूरी है। अब हम बात करें कि ईव टीजिंग कहाँ पे यूजुअली होती है। हम अगर रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे भी, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट कि, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जेंडर बायस्ड है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ईव टीजिंग होती है। हाँ बहुत कम केसेस हैं कि लड़कों को छेड़ा जाता है, बट मोस्टली लड़कियों को छेड़ा जाता है। और अगर देखा जाए कॉमन बसेस में, कॉमन ऑटोज में, कॉमन ट्रांसपोर्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं, जब लड़की सोलो ट्रैवल करती है, फॉर एग्जांपल ट्रेन का इस्तेमाल कर रही है, बस का इस्तेमाल कर रही है, तो लोग घूर रहे हैं।

0: होते हैं और घूरने के साथ साथ कुछ लाइक एक्सप्लिसिट हरकतें भी होती हैं, तो उन सब चीजों से कैसे आप काउंटर कर सकते हैं या आप खुद को कैसे सेव कर सकते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे
1: जा रहे हैं। और ये साइंस इग्नोर की नहीं है, इस पर बात करने की जरूरत है, बिकॉज जरूरी है। अगर हम बात करेंगे आप अवेयर होंगे, आप कुछ बोलेंगे हम अवेयर होंगे और मिलकर हम बात आगे तक पहुंचाएंगे। सो हम यही पे है, शो स्टार्ट हो चुका है, हम बात करने जा रहे हैं इवटीजिंग के बारे में। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं हिस्सा आसरा?
0: बस 8899-04904 is number you can call, message, text, WhatsApp और बन सकते हैं इस hottest frequency का hot हिस्सा।
1: बिल्कुल, तो जल्दी कीजिए शो चुना। और बीट्स तो खत्म हो चुके हैं, मैं बार बार बोली थी कि मन तो नहीं है जाने का, पर स्टार्ट हो चुका है शो रेडियो गर्ल, जहां पर हम दोनों मिलके आपसे बात करते हैं। आज इवटीजिंग में बात हो रही है, तो सुनिए हमारे साथ, अपनी राय पहुंचाइए। आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल्स, मैं और अस्रा आपके साथ है एंड हम शो पे आज बात कर रहे हैं ईव टीजिंग के बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। तो अस्रा, क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी चाहिए?
1: स्पेशली अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले यू हैव टू बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपने जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है व्हेन आई ट्रैवल अलोन कि क्या सबसे बेनिफिशियल होता है, अगर आप अलोन हैं किसी जगह पे तो अटेंटिव रहिए, आसपास कॉशियस रहे कि क्या चल रहा है, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स।
0: yes.
1: उसके अलावा अगर आप एक क्राउडेड स्पेस में हैं, मे बी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, मेक श्योर कि आप वुमेन ओनली बुकिंग सीट्स होती yes. हैं, चाहे स्लीपर कोच की बात करें, ट्रेन कोचेस mm-hmm. की बात करें, वुमेन ओनली कोचेस में बैठें, दैट्स मोर सेफ।
0: बिल्कुल। एंड जरूरी ये भी है कि अगर आप हेडफोन्स लगाते हैं
1: exactly.
0: लगाते हैं, मेक श्योर कि आप वो तब यूज करो जब आपको लगे कि एनवायरमेंट इर्द गिर्द हमारे सेफ है, बट आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको अवॉइड करना है, आपको जहाँ पे लगता है कि वर्बली कोई जानबूझ के आपसे बात करना चाहता
1: exactly.
0: है, तो उस चीज़ में आप एयरफोन लगा के रख सकते हैं। बट इफ़ एनवायरनमेंट इज़ लाइक कि आपको लगता है कोई पीछा कर सकता है, आप सुनसान जगह पे है या कई ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई आपके साथ नहीं है तो आप एयरफोन्स ना लगाए, वो डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि शायद मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं। सो जरूरी है कि वो चीज़ आपको अवॉइड करनी, एयरफोन्स नहीं लगाने, एंड मेक श्योर कि जैसे कि असरा ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेफ्टी के लिए भी ऑलरेडी चीज़ें हैं वहाँ पे, सो हमने पहले उन्हीं ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए सो दैट कि हम बाकी चीज़ों को समझे, ध्यान दें। एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट बोल्ड नहीं हैं तो आपको कोई भी हरा सकता है आज की दुनिया में
1: exactly.
0: चाहे फिर वो आपको आई बिलीव दैट कि एक आज औरतें भी अगर देखें तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ औरतों के ही बारे में बात नहीं हो रही
1: हाँ.
0: हम मर्दों की बात कर रहे हैं। रिसेंटली ऐसे एपिसोड्स हुए भी है, ऐसे कुछ हमने देखा कि केसेस आए जहाँ पे मर्द हरास हुए
1: exactly,
0: किस चीज़ की वजह से, वहाँ पे औरतें इन्वॉल्व थी, उन्होंने मर्द को हरास किया। इट्स ऑल अबाउट आप इतने कॉन्फिडेंट एंड बोल, अगर जितना आप डरोगे तो समझ लीजिए कि
1: डराया
0: जाएगा, जो डरेगा वो मर जाएगा, वो मरने से पहले ही
1: मर जाएगा।
0: बट ये चीज़ हमने खुद से करनी है, हमने चीज़ों को अवॉइड करना है, कुन किन चीज़ों को जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर लगे कि मेरे काम की चीज़ अगर है भी नहीं बट मैं इन्वॉल्व हूँ तो वहां पर हमें इन्वॉल्व exactly. होना पड़ता
1: है। एंड मोर ओवर देयर आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आप ले सकते हैं, जो हमारा पहले सेल्फ की बात करेंगे ठीक है। सबसे पहले आप अपने साथ पेपर स्प्रे या कुछ पॉकेट नाइफ जैसी चीजें आती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आप वो साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर छा मर्तवांगन सोहेको मर्तवांगन पाउडर बैग इसमें सुई थी, और कहते हैं कि ऐसे रखना चाहिए कोई भी ऐसी जो सेल्फ डिफेंस के लिए चीज है जो एक्टिवली आप अपने बैग से एक्सेस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: दूसरी चीज ये भी है कि आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए जो एक्चुअली अथॉरिटी गवर्नमेंट की बात करें जो उन्होंने हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड की है, वो हेल्पलाइन नंबर्स अगर हम याद रखें
0: तो
1: हमें
0: exactly,
1: और जो भी ऑथराइज्ड एप्स वगैरह हैं जैसे रैपिडो, अभी रैपिडो भी आ गया है कश्मीर में, यू कैन यूज दैट रादर देन गोइंग विद द लोकल ट्रांसपोर्ट।
0: बिल्कुल। और सबसे जरूरी एक और चीज है, दैट इज हरासमेंट हो रहा है उससे दूर मत जाए, उससे कन्फ्रंट करे, उसके बारे में बात करे। इट्स नॉट दैट कि हम हमेशा एक विक्टिम की तरह खुद को प्रेजेंट करेंगे
1: exactly.
0: अगर हम विक्टिम हैं एंड हम उस चीज़ को वो कहते हैं ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है और इस चीज़ का सोल्यूशन भी आना चाहिए, वो चीज़ करना है एंड वी हैव टू कॉल आउट दैट बिहेवियर पब्लिकली। अगर पब्लिकली हो रहा है हमने वहीं पर उन्हें कन्फ्रंट करना कि आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, आपको अपने आप को सुधारना चाहिए। एक बार आप आवाज उठाओगे अगली बार कोई भी दो बार सोचेगा कि वो चीज करने से। एंड सबसे ज्यादा जरूरी एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज वी हैव टू सपोर्ट द विक्टिम। अगर कोई हो रहा है, कोई पागल नहीं है, कोई अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि मेरा
1: नाम खराब
0: exactly. हो, मेरे किरदार पे कोई भी आ जाए, सो यू हैव टू सपोर्ट द विक्टिम। आपको समझना चाहिए कि किसका बिहेवियर क्या है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद सबूतों के बाद आप एक विक्टिम को न्याय दिला सकते हैं। सो आई कैन से कि यह

एक इंसान के लिए इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट एवरीबॉडी. हर एक को सेफ सिक्योर रहना वो हर एक इंसान का हक है. फिलहाल हक तो ये भी है कि शो हंगामा अभी स्टार्ट होने वाला है. तो असरा आपके साथ बाकी बातें करेंगी. फिलहाल मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा. कल 12 बजे मिलेंगे. सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल्ली.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दावते इश्क तो है, इश्क वो भी ऐसा कि जिसमें हंगामा और ड्रामा हो। शुरू हो चुका है शो हंगामा, बट देखिए आपकी और मेरी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी रेडियो गर्ल्स में, बिकॉज वेंसडे एंड सैटरडे इज ऑल अबाउट वेमेन, क्योंकि एक स्पेशल शो होता है रेडियो गर्ल्स और उसके बाद हंगामा होता है बराबर 4 तक।

0: के मीठे।
1: आय हाय, देखिए बातें और अदावतें, देखिए अदावतें तो नहीं है आप सबके लिए, बट ये चीज है कि बातों के साथ साथ गाने जो है वो एकदम जकास है।

जी हाँ, यू हैव ऑलरेडी गेम टू मी. एंड अभी देखिए शो शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातें होंगी, क्या ट्रेंडिंग है उसके बारे में बात होगी. सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. शो शुरू हो चुका है हंगामा. मैं बस यूं कही, यूं वापस

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अभी कुछ देर पहले शो शुरू हुआ था हंगामा, और कुछ देखिए हमारी एक परंपरा है कि हम बात करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, यानी कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या देखिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ट्रेंड क्या कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसी रील्स होते हैं, कुछ ऐसे मीम्स होते हैं जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं एंड रीपोस्ट कर रहे हैं एंड दे आर रिक्रिएटिंग इट लिप सिंकिंग एंड डांस रील्स। और आज एक बहुत ही होलसम, बहुत ही प्यारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाउ क्यूट इज़ दैट बेबी। मैं बात कर रही हूँ एक 2 सालाना एक बेबी है, एक मदर और बेबी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे छा रहा है कि कैसे वो बच्चा जब कोई और गाना सुनता है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, बट जब वो सुनता है ये गाना, इवन इन द आउट्रो देर आर नो वोकल्स, बट सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रो सुनते ही एक प्यारी सी मुस्कान उस बच्चे के मुँह पर आ जाती है।

गाने का नाम है शरारत एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये गाना सुना होगा बिकॉज लाइक काफ़ी ट्रेंडिंग काफ़ी मस्त ट्रैक है धुरंधर मूवी से. बट एक बच्चा किसी ऐसे म्यूज़िक या किसी आर्ट फॉर्म को किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ को अप्रिशिएट करे क्योंकि बच्चे एक्चुअली मन के सच्चे होते हैं. लाइक किड्स आर प्योर सोल. सो अगर एक आर्ट फॉर्म इस तरह से एनर्जी के साथ एक बच्चे को एक महसूस खुशी दे सकता है तो सोचिए वो कितना दिल से परफॉर्म किया गया गाना होगा. Enjoy कीजिए back-to-back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए Radio Sonar 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Welcome back to Show Hangama only on Radio Sonar. देखिए शो हंगामा पे हमेशा एक पर्टिकुलर शो का टॉपिक होता है बट वो कुछ देर बाद आप तक पहुंचेगा. दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट इफ यू आर लाइक ट्रैवलिंग, इफ यू आर गोइंग बाय द ट्रेन और यू आर गोइंग बाय द रोड लाइक ड्राइविंग अ कार, बस अपना ख्याल रखिए. And make sure that you respectively follow all the rules and regulations, चाहे वो on road हो, train हो, कोई भी transport हो. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सवारी अपने सामान की और खुद की खुद जिम्मेदार है. तो अगर आप drive कर रहे हैं तो ध्यान से drive कीजिए, traffic SOPs को follow करना ना भूलें और सुनना ना भूलें. Radio Sonar 90.4 FM. मैं बस यूँ गई और यू वापस आई.

0: Planet NR 90.4 FM.
1: मुलाकात की तमस शायद उन्हें जल्दी वापस ले आए।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ रक्स की बात हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है बिकॉज इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. हम बात

करने जा रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा कुछ समय पहले शुरू हुई थी और अगर अभी की बात करें तो अभी टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड है, हॉल्ट पर है, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ द ट्रैक रेस्टोरेशन और वेदर के चलते चलते जो और आप जो भी श्रद्धालु हैं उनकी सेफ्टी के चलते फिलहाल के लिए टेम्परेली इस साल का जो यात्रा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बट बात अगर करें इस कहानी की कि कहाँ से शुरू हुआ था ये श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो कहानी है, ये जो एक किस्सा है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये जो एक पवित्र गाथा है, ये कहाँ से शुरू हुई थी। इसके अलावा आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, ये जो पावन यात्रा है, ये कैसे लोगों की हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, और लोग कैसे इस चीज़ के बारे में, जो भी ये यात्रा हर साल होती है लगभग 2 महीनों के लिए, तो कैसे लोग इस चीज़ को के लिए प्रिपेयर होते हैं, और कैसे जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने बहुत सारे लोग कश्मीर आते हैं, अमरनाथ जी यात्रा का जो बहुत ही मुश्किल ट्रैक जो है वो कंप्लीट करते हैं, फिर गुफा तक पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच कर लोगों से मतलब क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि ये ट्रैक एक्चुअली कैसे बेनिफिशियल है उनके लिए, तो आज उस बारे में बात होगी। मैं मसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई। सुनते रहिए रेडियो सुनार द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट्स हॉट।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी

0: हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

हाय मैं मस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। और जैसा कि आज हम अमरनाथ जी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा अ जर्नी ऑफ फेथ के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करें टूरिज्म और डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं लोगों को, जो एक्चुअली वहाँ जो लोकल्स हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स टूरिज्म की वजह से आता है कि वहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो कुछ भी खरीदते हैं, जो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होता है उस चीज़ की वजह से लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, घोड़े वाले होते हैं, चारपाई वाले होते हैं, होटल्स होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से अगर देखा जाए होली एंड सोली जो इकोनॉमी जनरेट होती है, दैट इज़ ऑन अ वेरी गुड नोट। इसके अलावा अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी इन जो यात्रा है इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, बिकॉज जो बाहर से पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ दर्शन के लिए तो उनकी फैसिलिटी के लिए, तो जब वो फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करते करते मैन पावर की भी ज़रूरत लगती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और काफ़ी हाई लेवल पे होता है। इस वजह से कि बहुत से घर चलते हैं इस यात्रा की वजह से, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये सिर्फ एक फेथ का निशान नहीं, ये सिर्फ एक एक यात्रा ही नहीं है, ये सिर्फ एक वो हमारा जो फेथ है, होप है, या हम वो अपनी जो आस्था लेकर वहाँ जाते हैं, ये सिर्फ उसका पार्ट नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट भी है, जहाँ बहुत सारे लोगों का घर सिर्फ इस यात्रा की वजह से चलता है।

मैं मस्त्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार। अगर आप भी श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं तो 8899049904 इज नंबर। इस पावन आज का जो टॉपिक है ये बहुत पावन है, बहुत खास है, तो इस चीज़ को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं मस्त्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: మంగళం సీను పార్టీ అంటే ఇండమే గానే సూట్ అమీదే మొదటి తూరే ఒక స్మగ్లర్లేందే పోలీసులు పొలిటీషియన్లు అందరు వచ్చిండారు పార్టీకే అన్ని కోర్టు చేసి ఉండడు

हाय, मैं हूँ अस्टाउट, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। देखिए, अभी जैसे कि आज हम अमरनाथ जी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, बट यू हैव ऑल द स्कोप कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं। 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप, और दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन, बैक टू बैक ट्रैक्स, मैं हूँ अस्टा, सुन रही हूँ रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय मैं वस्ता और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा। और जैसे कि 4 बजे तक आप घर मेरा साथ रहता है और आज अभी 4 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, तो आप घर मेरा साथ यहीं तक था। बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ क्रेजी करते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और आज के लिए इतना ही, कल वापस आऊँगी 2 बजे करने आप सबको एंटरटेन। और आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड

आप भी पर्दा ना करें, उठाइए मोबाइल फोन, जुड़ जाइए हमारे साथ, बन जाइए शो का हिस्सा। और आपको ये भी बताते चले कि आज हम बात करेंगे अपने शो पे पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड का, जो थैंकफुलनेस होती है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ऊपर वाले से लेकर दुनिया के इंसानों तक, आसपास जिसने भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ किया है। व्हेन वी आर हम्बल, व्हेन वी आर ऑनेस्ट सिंसियर, और हम ग्रैटिट्यूड के साथ इस बात को समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किस किस का हाथ है, और शुक्रगुजारी करते हैं, कोई सर झुका के, कोई आंखें नम करके, कोई मन ही मन में उस ऊपर वाले का या उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में जो होना है वो हो रहा है। बस इसी पे होगी बात, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज अमेजिंग, और इस खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है ऊपर वाले की जो मेहर है वो, और साथ में जो अपने होते हैं उनकी दुआएं। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो चिनार। साहिल मुजफ्फर इन द हाउस, एंजॉय सम सुपर कूल बॉलीवुड म्यूजिक इन दिस ब्यूटिफुल इवनिंग। आई एम हियर ओनली फॉर यू।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।

ऑलराइट, अगर आपने अभी भी जुड़न किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, जी हाँ, दिल की बात साहिल के साथ। और इस खूबसूरत सी शाम में हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड, ये जो ट्रैक आपने अभी सुना, ये बिल्लू मूवी का है। अगर ये मूवी आपने देखी होगी तो इसमें आपको पता होगा कि

शाहरुख खान कैसे अपने उस दोस्त के तई शुक्रगुजार था, उनको मिलने की ताक थी कि क्योंकि उन्होंने उनको बहुत हेल्प की थी बचपन में पढ़ाई वगैरह में। तो कहीं ना कहीं जो ग्रैटिट्यूड का लेसन है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और हमें इस जज्बे को समझने की ज़रूरत है और वी हैव टू ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज इनटू लव एंड हैप्पीनेस। जी हाँ, आप सुन रहे दिल की बात साहिल के साथ, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड भी हो रही है बात। फिलहाल कुछ और सुपर कूल बॉलीवुड ट्रैक्स आपके लिए प्ले कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी आई हेट लव स्टोरीज एंड इट्स रोली कम इन द बैकग्राउंड।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4
2: FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल 90।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
6: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे का दमा पा पा मगा दमा पा पा मरे मागा।
3: हाँ सा

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: चाबूंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाबूंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट वैकेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा का।